सकती है। और मैं तस्वीर से हर वक्त कहता हूं कि जा, चली जा यहां से, पीछा मत कर मेरा। ठीक है, हर बार उसका चेहरा ऐसे उभरता है मेरे सामने जैसे बादलों में से चांद निकल आया है।